संगठन से बचना दरबंदी स्वीकृति करने नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन पहलो संशोधन आदेश 2083 स्वीकृत करने सेवा करार का कार्यक्रम।

तपाईँ सात्री खाना खाए व्यायाम शब्द गरी धुमपान मदिरामा सेतुन रही तनाखन नियन्त्रण गरी आजुक निर्णय कार्य जीवन अथवा निशामा रोगमा से बाँकी स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गुरुबाबा सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी जनहितमा चालिस

सोचने में अपने साथ में दुख दर्द होते हैं, मन की सुनता जी के घर में बड़ा बड़ा उत्तर प्रदेश में नंबर वन सुनता जी घर में तैयार करे

0: का एक उत्तर सुनवाई 5 अप्रैल आदेश में अदालत ने मृत आयोग में से जबकि प्रमाण पूर्ण परिवर्षित आखिरी लेख आध्यात्मिक तथा तीन जनता बिल्डिंग द्वारा पूरे सुकुम राशि का समस्या समाधान करा सरकार अगर आवश्यक पहल करते निर्देश दिया था सरकार पेंशन अनुसार विकलांग करना सरकार 10 वर्ष समय देश विकल हक हस्तांतरण दान व जीतो धारा की परिणाम व्यवस्था अनुपुर से दुई दशक से ध्यान समय से अनुसार बंदा और नाम सारी करने पहला मुक्त कमैया अदालत उपद्रा कोलपुर दुई मुक्त कर्णकार का थारू सीताराम थारू सीमा थारू लगाय विशेष पसरा से ध्यान प्रभावित रखने से डायर बैंकी का क्रीट में फैसला आयोग पास मुक्त कमैया अगुआ अनन्या थारू अदालत का आदेश के अनुसार बंदर और नाम सारी का अधिकार कार्यान्वयन या दलर कुलर प्रतिक्रिया दरवाजी का एक देश के खंडीटो तथा पुनः संपत्ति अधिकार का मार्ग पर आदेश बिना बाकी रहत मार्ग का आयु अब राष्ट्रीय समाचार का बारे बिंदु से
1: मिटर द्वारा विलुप्त आंदोलन सरकार और पीडीएफ पक्ष बीच 9 बजे सहमति के ऊपर स्थगित होगा। पहला खुशहाल 25 बजे जनकपुर को तृतीया दक्षिण से शुरू हुई पैदल को यानी मानव भारत को नीलगढ़ भूगल पाता मृतगढ़ भूगल पाता 32 बजे गृह मंत्री सुनील गुरु पीड़ित प्रतिनिधि

0: कीजिए, हम उनके कृपा से मेहनत तो पूरा पूछ पड़ा पूरा देश हमें लागत हम उनके पूरा टीम चल गए
1: तो कहीं चिंता कर सको।

पानी गिर रहेगा सर। ऐसा हमारा उपयोग भर बजे गोलबेरा अरुण जिला में पठाने तैयारी कार्य क्षमता अगर बढ़े संबंधित विभाग का सहयोग मांगना अब सजिलो नंबर सार्वजनिक महिला 19 वर्ष मुनि को प्रीमियर कप क्रिकेट को सेमीफाइनल में पराजित भएको छ। विश्व एसियाली खेलकूद को तैयारी का सुपर टोली भाई पश्चिम चीन जाने साझा खबर को समय सकिए। प्राविधिक साथी सुनील राज भारतलाई धन्यवाद। भोलि साउन 2 गते बिहान 6 बजे को साझा खबर में फिर भेट में संतोष चंद्र बर्मा हूं। नमस्कार शुभरात्रि।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा

जनहित में जारी संदेश। आपने आपका आपने आवाज सभा में सुन रेडियो पुरस्कार का आवाज जो रेडियो पुरस्कार

0: सत्कारमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी चर्चितमा जारी सन्देश
1: जो कोई युवा

संतुलित खाना खाई, व्यायाम शब्द करी, धूमपान मदिना बसे दूर रही, तनाव बना नियंत्रण करी, आज निर्दय कार्तिक जीवन अदराल मुसलमान रोगों से बांधे स्वस्थ जीवन अपनाई। रेडियो गुरुवार एफएम को सहकार्य स्वास्थ्य कार्य प्रत्याशी जनहित मोदारी संदेश।

0: 40 वर्ष कटेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौं।
1: चिसो पदार्थ माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफुल खाऊ।
0: मद्यपान र धूम्रपान सेवन नगरौं।
1: स्वस्थ रहौं। सुखमय जीवन बिताउँ।
2: रेडियो प्रभाव एफएमद्वारा जारी प्रचारी सन्देश।